0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुल कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य चाडू
3: हलो कबा मेदु केने
1: वारा रंगल
4: वारा फक्का हम
5: मेदु यहाँ रंगले नो
4: वारा बलिको
5: देंगे काला गोते
6: हम वारा बेस्टो
4: दें यहाँ यहाँ नो
3: ऐहुन तेरेंगे हाला हुआल ओलम फिल वाला वाह कदा कालो मा
6: कौन मैं बुद्ध दो है गिरेगाड़ो एकार कट सुम मिनट का तिवी राज्य के अड़ों के नस्ते नी
5: मिया तो की ने
7: इंहा सातरस्ते का 40 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव आदि 80 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड

0: அவஸ் குறே
1: சித்தமாவா சித்திமாவா நிக்கம் அவ துருவே பல்லவா
0: கிணத்துவி
1: இத்திபா வட்டையா கண்டவனி உத்தீமு திம்பேன் இம்மி கணாய ஃபராத்தங்க எஹுன்னவி அதித்த குர்ஃபானோ இம்மி தோஷிவானி வெஸ் அதித்த குர்ஃபானோ தென் எஹுன்னவி முகம்மத்த குர்ஃபானோ எத்த குர்ஃபான ஜெஹிகன் தென் எஹுன்னவி ஹசந்த குர்ஃபானோ
0: ए तिंत कुर फेणी गेंदो हुरिया कुळवरत के कुलदे क हुटा लाफा एमें इफरात क अरा अदब दा को गेंगे तिबि
1: आ उतिम हुसैन खतीब त कुर फान ग तिंबे ना मुली अतळु ग एमे मिस कमे हिताने मे दो ए तिंबे वार ग फेणी वडा गतम कंबा हचा ग हिप्पलंग एरियोला नूने के माले के कोयलु तेरे ग नूने क स्तून फिली वत्तर जा फिरि हें कु देना कि तिबे बा एके
0: ना हम तेदित दलिक देता
2: ईदु वेदुमैगिं बारशं उतीम तिंबें वडा नेवमुं ए तिंबेंगे बोल गुं जहाने अंहि गुज्जकु वेतो कबा ऐसा मसे के कुरेवि ऐतिम बेइंगे हैवंत कम फेनिफा एकं कुराकं एफिस कुच्चा करनो किरनो एम्मे फ़ाहों कांबे ऐसा के ऐतिवटा के न्यो मकं ऐरशु एम्मे निकमेति आदि एम्मे फ़ागेरु मीहा के दरिफुल एकमं एपस्वी ऐ बारशु बोशिवलु बुला फातमागे रहेंदी कांबे ऐसा रहेंदी फेमवरुआ नलहद्दुआ गुंजेहुमा फुनुवे ನಮ ನಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಗುರ್ಫಾಣು ಬೋಲ ಗೊಣ್ಣು ಜೆಹುಮಂ ಎದಿ ಬಟಾಣ್ಣೆವಿ ಏಕಮ ಕುರೆ ಹಿಂದಿಯ ಗೊಂಜೆ ಸೆವುಣಿ ಎತ ಕುರ್ಫಾಣುಗೆ ಬೋಲ ಗೊಂಜೆ ಹುಮಾಯಕ ವಗುತು ಏಕಮಣ ನಂಗವ ಕೊಂಡುಬಚ್ಚಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗೆ ಬಡಾಣ್ಣೆವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಗುರ್ಫಾಣ್ ರೆಹಿಂದಿ ಗೊಯ್ಯೆ ಗೊವ್ಯಾಗೆ ಬಡಾಣ್ಣೆವಿ ಕಮಣಾ ಮಗು ರಶುಗೆ ಫುಟ್ಟರ್ ಫರಾತ

पूरा बीतन तंग हदा फुनना है एद्दो ने नू फोटो तना करने के स्कोस्सा फोटो तना का हदा मुंदार इंगे अब इंका फोटो है मिस्से वाणी करने सानो हम एंडो के दानी कोस्सा फोटो तना करने फोटो तक बच्चा बिना को गाड़ी पूर है दे अलग हदा वाणी असलो फर्स्ट फैक अट्टा वागो तक इन्ना गाड़ी पूरे इन्ना तेंग अलग हेदो ने हतर फैक अट्टा वागो तक इन्ना गाड़ी पूरे तेंग हिम वेगे हदा निम्मी तना फैको तक गया गया कहीं तेंग अने कम इंको तम हला खोल हला खोल वाणी कम बुरा हाँ फर्स्ट फैक है रिली गाड़ी बोरिंग है दिन असो ये फोटो नेती मधी माँ भाई मस्त होता फोटो नेती या हम वारंग मुदा गोन असो मुड़ा गया था नालों को बैंड उस केले कंग ये थी प्रिंट करो एक को जब कमेंट हुई नहीं तो खुरा करे ते ना वैसे मॉडल ले हदम बैंड उठा को बोर्ड को कम को जब फोटो है नगाप दिन ये थी इनको तो हम स्केल को ला बोर्ड को लन बोर्ड को दिया कि हम ये बार हदा ने दिन अमीर ले हला को लन जो अच्छे मी बना है गाड़ी बोर वार दिन इनको तो सीधा वारंग हला को नुए දැන් දේරවි දැන් වර වර මාසක් කතේ අම ගිව ෆ්‍රෙන්ඩ් උකරන් දැන් අම බේන හැම ඉංග උතන් හදා අලගොණ්ඩ අම ඉගොතන් හදා දු කොලිස් මිහ කරන නේ ගේන තාන හැම මොනා කොම් කොජ මා බඩක එක එකතක බේන වෙන්නේ බේන හැම ඉංග උතන් අස් හදා

0: हम दोनों साथ होंगे तो मुझे लगता है मैं पुल से रात से भी गुजर जाऊंगी।
1: कोई भी तूफान, कोई भी मुश्किल हम दोनों को दूर नहीं कर सकते।
2: मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगा तजीन।
3: मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग समझ नहीं रहे।
4: मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहती हो। फिर
5: किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने।
3: अम्मी मर गई हो तुम हमारे लिए।
0: मैं जानती हूँ इस पैनिक के पीछे कौन है।
1: कौन?
0: तुम। आई बड़े लवर बॉय।
6: वाह जी वाह, क्या कमाल की एक्ट्रेस हो तुम।